0: ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक धला आम तक जग तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के ताली झुम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के झम तारी जग तारी तक नक तक तजन तजन तजन तक झम तारी जग तारी जाने जाने को तजन तजम तजन तक तक दंग गुदम कर दंग गुदम तक दंग गुदम
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

जाने मन कोय, मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी

0: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।
1: ट्रेवल हब वर्ल्ड.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथे।
6: सीरीन हॉलिडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
7: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
6: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
7: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
6: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenehollidays.co.uk पर।
8: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजोल्स कचोर साउथॉल
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Ek badhiya कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
11: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
9: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
14: A reliable airline, excellent in-flight entertainment and delicious food. All this at a low, low price. Connect with Travel in Style. Great choice of airlines to exciting destinations.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound in your pocket this morning can get you 128.74 Indian rupees, 379.90 Pakistani rupees, not forgetting 438.15 Sri Lankan rupees and 1.36 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And the gold rate is currently trading at 111.34.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
0: Breakfast with Deep Raja.
1: Okay, a very gold morning to you. I hope you're enjoying your breakfast. Kya kha rahe ho? Mujhe bhi khila do thoda. Anyway... Anyway, I hope you're fine. I hope you're well. It's lovely to be here. It is Saturday morning and I love waking you up on a Saturday morning. Just to let you know, before we carry on and lead the songs to the news, most of you have said one thing, Deep. My house is a temple. I take my shoes off when I come into our house. In fact, our whole family does. So if people don't want to take their shoes off or shouldn't, unless there's a valid reason, like they can't, you know, disabilities or they're, you know, a builder or plumber or something, then they should take their shoes off because... I do it, and I'm asking you to do it in my house. If you don't want me to do it in your house, that's different. Very, very good points. Look, leading the next songs up to the news, and then after that, I've got more important questions and fun for you too.
0: Yeah.
2: Like a gold.
0: Like a gold.
3: The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
6: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
5: Call today on 01923 883 100
6: or go to skylordcruiseandholidays.com.
5: Book with confidence.
6: We're atoll protected.
7: अरे चंचल कुमारी साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया लॉन्ग टाइम कैसी हो तू
8: खातून कौन थी
7: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस
8: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी इस हर पति एनिमल
9: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो पति पत्नी और वो दो इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th of May.
10: London Entertainment दी सब तो वड़ी रात आ रही है. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, ते होर जबरदस्त artists. 9th May, शाम 6 बजे, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets, call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 9939635757 Greens Bar Danube Prime Location
11: High Appreciation
12: In Dubai
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 hour line.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
15: गारंटेड
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
15: फोन 0208574-8410
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
17: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
18: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाय आप पवित्र यात्रा पर
17: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
18: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
17: दर्शन पण अने यूरोप पण
18: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ही बुक करो स्टार टूर साथे
17: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
18: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
6: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मई एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन और इन स्टोर फ्रॉम स्टनिंग गिफ्ट टिन्स टू रसमलाई एंड मोतीचूर लड्डूस डोंट वेट द offer ends on the 10th of May.
0: Breakfast with Deep Roger.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल World.com.
3: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

0: Deep Roger, waking you up every weekend. Like. Time now for the yes or no question.
1: Actually, it's a multiple choice one, so let's do this, shall we? Good morning. Okay, this is the question. Let me know if you can get this right. Get your fingers on the keyboards, please. So the question is, which chess piece could be a member of the church? Is it A, bishop, B, pawn, or C, rook? Which chess piece could be a member of the church? A bishop, a pawn, or a rook? Tell me now, you know the numbers. Tell me quickly.
0: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.
1: Do you play chess? Let me know.
0: Breakfast with Deep Roger. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And a pound in your pocket today can get you 128.25 Indian rupees. And don't forget, when it comes to SBI, one of the key things is you can make those transfers via the branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: like a gold.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर, शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
2: खातून कौन थी?
6: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
2: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
7: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th of May.

0: ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में. तो भाई बता दे, मेरा नाम है अश्विनी एंड आई एम सिटिंग इन फॉर रितु शर्मा शो टुडे. हमारा शो आ रहा है मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में, लंदन में, और 3 घंटे रहने वाला है आपका और मेरा साथ. तो एक बार मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 13 मिनट्स पास्ट 10. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो. ओके, एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. यस, डिल फ्रॉम ईलिंग, आप लिखते हैं कि भाई आप काफ़ी प्रेजेंटर्स को कवर कर लेती हैं अलॉन्ग विथ आपका भी अपना खुद का शो भी जो चल रहा है. तो मैं कल रात आपका शो सुन के सोया था और अब जब आंख खुली और फिर से रेडियो लगाया तो आपका ही आवाज़ है ना. एक्चुअली रेडियो वाली जो मेरी पड़ोसन है, कल रात में मुझे बोली तू कहाँ घर जा रही है, यहीं पे बोरिया बिस्तरा लगा के सो जा. मैंने कहा हाँ यार, एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट शो होता ना तो मैं शायद यहीं पर सो जाती. बट इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, इट हैपन्स राइट, कि हम लोग दो चीज़ें जो मिस करते हैं कहीं पर भी अगर बाहर जाएँ. वन इज हमारा अपना खुद का बेडरूम का गद्दा एंड दूसरा इज हमारा बाथरूम. दैट इज व्हाट समथिंग आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर. कि अगर मैं लंदन में ही हूँ, चाहे मेरा शूट चल रहा है, चाहे मैं रेडियो पे हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि आई विल गो होम. बस भाई अपना घर है ना. तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जो लगता है कि नहीं है, बस ये जो है ना, फॉर मी दैट इज लाइक मेरे घर का अपना गद्दा, माई बेडरूम एंड बाथरूम. तो ऐसे किसी चीज़ को लेकर आप लोग पर्टिकुलर है अपनी लाइफ में, जरा बताइएगा जरूर. नेक्स्ट, अमेजिंग ट्रैक्स लगे हुए हैं. जी हाँ, रितु जी का शो है तो रितु जी के शो में जो जो सारी चीजें होती है वो यहाँ की होने वाली है, लेकिन आवाज और अंदाज थोड़ा होगा अलग आज.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 rupees 25 paise. Indian rupees hain to dhyan rakhiyega. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: जैसे
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स।
11: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
10: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स।
12: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
13: अच्छा काना, क्यों जा रहे हो?
14: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
12: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
14: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
12: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
14: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
15: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
18: Travel in style का वादा है,
19: कहीं भी घूम कर आइए। Flights और holidays की best prices के लिए हमारे पास आइए। अपने early bird discount के लिए number मिलाइए 02089540077। That's 02089540077। आपकी मन की तसल्ली के लिए ये fully bonded है।
20: Travel in style.
21: Travel in style.
20: Travel in style.
22: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
23: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a fantastic track from the film Hero. 1983 mein Hero release hui thi. Lata Mangeshkar aur Manohar Udas ki awaaz mein sunaya aapko pyar karne wale kabhi darte nahi. Yaar zamana koi bhi ho lekin pyar karne wale na sach mein nahi darte. Okay, jinhone abhi abhi tune in kiya hai, aap sabhi sun rahe hain Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Midlands and Manchester. मेरा नाम है अश्विनी and I'm sitting in for Ritu Sharma today. बिल्कुल वही हमेशा का तरह जो है शो आने वाला है और गपशप इंटरेक्शन चल रही है. आप लोग सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, थोड़े सरप्राइज है. अब भी तो तुम गई थी शाम में अश्विनी, रात में तुम गई थी और वापस आ गई. चलो यार, चलते रहता है. दिस इज वॉट इज द मैजिक ऑफ हमारी अपनी रेडियो का. सो कुछ यूनिक जॉब्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ. और मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि जैसे मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ कि यार मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आई मिस माय गद्दा एंड माय बाथरूम, तो ऐसा किसी का कुछ पर्टिकुलर है? तो सब लोग अपनी अपनी राम कहानी मुझे भी सुना रहे, क्योंकि मैंने अपनी राम कहानी सुनाई है सबको. किसी ने कहा कि भाई मैं कहीं पे भी जाऊँ मैं अपनी पिलो लेके जाती हूँ. किसी ने कहा कि आई हैव अ स्पेशल ब्लैंकेट दैट इज़ वेरी फेवरेट, मैं उसे हमेशा अपने साथ में रखता हूँ. किसी ने लिखा कि मेरे फेवरेट पजामाज है, मैं दुनिया के कितने भी स्टार होटल में चला जाऊँ, कुछ भी जाऊँ, लेकिन मेरा वो फेवरेट पजामा और टी शर्ट है ना, वो हमेशा मैं कैरी करता. आई एम सीरियसली लविंग दिस जवाब कि ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना हमें कोई पूछता है ना हम कभी किसी को बताते हैं, लेकिन इस शो में वो होने वाला है. नेक्स्ट ट्रैक आप सबके लिए लेके आए हैं ईमानदार फिल्म से सुरेश वाडकर एंड आशा भोसले की आवाज में.
0: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coco Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: What a fantastic track. Suresh Vadkar aur Asha Bhosle ki awaaz mein imandar film se sunaya aap sabko ye. दर्द भरा गाना तो है ना, इसका म्यूजिक बड़ा ही फैंटास्टिक है और आशा भोसले का एंड में आके जो रोना है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो सिसक आ जाती ना, वो सिसकी वो थोड़ा सा हिला देती है. एनीवेज नरेश जी, आपने कहा कि अश्विनी कैन यू प्लीज़ डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय लेट वाइफ दर्शना. जी हाँ, उनके लिए हमारी तरफ से ये डेडिकेशन, आपकी तरफ से भी. एंड मॉर्निंग शुरू हो चुकी है तो राजीव पटेल जी कहते हैं कि अश्विनी दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज़ फॉर मी टू नो कि आज आप यहाँ पे ऋतु का शो कवर कर रही हैं. मेरे फ्रेंड अश्विन का आज बर्थडे है तो भाई अश्विन को आपकी तरफ से राजीव पटेल जी, अश्विनी की तरफ से एंड लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि वी ऑल आर अ म्यूजिकल फैमिली और म्यूजिकल फैमिली में होता ही है कि जब फैमिली मेंबर्स के यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो, ऐसी कोई भी घड़ी है जहाँ पे हम सबको साथ रहना चाहिए, तो वी आर वेरी मच देयर फॉर यू.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Laika Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Ritu Sharma on Laika Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.85 Indian rupee, 379.88 Pakistani rupee, 167.44 Bangladeshi taka, 87.39 Afghan Afghani, 437.97 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars, 176.04 Kenyan shilling.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच शुरू होने वाला है पूरी चार घंटे बाद यानी हमारे अपने 3 बजे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: मिलाने की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है. It's 48 minutes past 10. आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Midlands and Manchester. भाई कई लोगों को बातें करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोगों को बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली स्मॉल टॉक्स तो अच्छी लगती ही नहीं. तो ये एक मोहतरमा है जिन्होंने जिंदगी के 28 साल पूरे 28 ईयर्स इन्होंने फेक किया, झूठ बोला कि मैं अंधी हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है. एंड द रीज़न फॉर दिस वॉज क्योंकि उन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं था. तो कैरमन जो 57 ईयर्स ओल्ड हैं उन्होंने ये किया नियरली 3 decades. 30 साल तक ये इंसान जो हैं ये बिकॉज बातें करना इनको पसंद नहीं है लोगों से ज़्यादा, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अंधी हूँ. अब ऐसे भी अंधी हूँ मतलब मेरे से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, तो टॉपिक्स कम रहेंगे, ये सारी चीज़ें थी. लेकिन ओवरऑल उनकी फैमिली हमेशा सरप्राइज होती थी कि टीवी के जो सीरियल्स चल रही हैं, सीरीज चल रही हैं, इन्हें कैसे पता होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है. और ये मेकअप बड़ा प्रॉम्प्टली अच्छे से करती थी. लेकिन एक दिन ये चीज़ सबके सामने आ गई कि 28 साल तक इन्होंने बातें नहीं करनी है, इसलिए खुद को अंधा बताया. नाउ शी कुड बी फेसिंग लीगल इश्यूज टू आफ्टर रिपोर्टेडली रिसीविंग डिसएबिलिटी बेनिफिट्स व्हाइल प्रिटेंडिंग. जी ये बड़ी गड़बड़ वाली एक बात हो जाती है कि जब इंसान मिसयूज़ करने लगते हैं चीज़ों को तो उसकी तैयारी भी लोगों को रखनी चाहिए. वेल, आप अपनी सैटरडे संडे मंडे से लेके फ्राइडे तक पूरा हफ्ता जो है आप तैयारी रखिए मेंटली अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आपने अपना म्यूज़िकल रेडियो ऑलरेडी चुन लिया है और आप हमारा साथ देते हैं, हम आपका साथ देते हैं. ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके. कोई खाने पीने के लिए पूछ रहा है, कोई कह रहा है कि क्या बात है, आज लंच बनाओगी या छुट्टी रहेगी. चलिए बढ़ते हैं आगे.
0: ये है Leica Gold.
3: बोले तू क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
6: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र.
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar.
8: कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट फॉर वन नाइट ओनली बैंक हॉलिडे मंडे द 25th ऑफ मई एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल
9: विद फुल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बाय आरजी एकेडमी ऑफ म्यूजिक
8: प्रेजेंटेड बाय पेपेस एंड पावर्ड बाय बेरिको फूड डिस्ट्रीब्यूशन
9: विद टीवी पार्टनर जी टीवी हॉस्पिटैलिटी पार्टनर स्प्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप एंड रागासन
8: टिकट्स अवेलेबल नाउ एट वेन्यू बॉक्स ऑफिस और टिकटमास्टर ब्रॉट टू यू बाय रॉक ऑन म्यूजिक यूके इवेंट्स लाइव ट्यूटर्स वैली एजुकेशन Emprio Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Search is changing.
13: Customers aren't just using Google anymore.
12: They're asking AI.
13: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
12: One business, one recommendation.
13: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
12: Will your business be the answer?
13: Or the one that got left behind?
12: The future of search has already started.
13: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
12: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
15: 100% halal meat prepared with care every day.
14: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
15: And don't forget, get your favourite frozen items too.
14: Find Tariq Halal inside Chelmsford bus station parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
15: There is only one.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
19: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold, Greater London. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: क्या बात है, फैंटास्टिक गीत आप लोगों के लिए लेके आए थे। इस सेकेंड आवर की शुरुआत हमने की हम आपके हैं कौन, विच वॉज रिलीज इन 1994, लता मंगेशकर एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। मौसम का जादू, मौसम का जादू एक्चुअली तो अभी आ रहा है ना, स्प्रिंग आ गया, समझ आ रहे हैं, तो जादू तो बिखरने वाला है। एंड नेक्स्ट ट्रैक वॉज किशोर कुमार की आवाज में पाप की दुनिया चोरी चोरी यूं जब। अब इसमें सनी देओल जो है फ्लूट बजाते हुए जंप करते हैं, एट डिजैक कितनी बार जंप की होगी ना उन्होंने, वो गाना मैंने देखा था एंड बहुत साल पहले कभी तो ये सुना भी था। ऐसा यार जरा ट्राई करते हैं, ये वाला गाना ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमने सेकेंड आवर की शुरुआत कर दी है और इस आवर का फीचर होता है यादें, तो यादें ज़रूर याद करेंगे अभी नहीं कुछ देर बाद, लेकिन उसके पहले हो जाए थोड़े से यूनिक जॉब्स। अभी यूनिक जॉब्स जो होते हैं ज़रा हट के जॉब होते हैं, आप और हम देखिए जैसे नौकरी करते हैं वैसे होते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल जॉब होते हैं, जैसे हम रेडियो प्रेजेंटर्स जब आते हैं तो दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल जॉब, ये अनकन्वेंशनल जॉब में ही आता है, लेकिन यूनिक जो है ये हटके जॉब्स क्या होते हैं। तो स्नेक मिल्कर्स यानी ये जो हैं डेंजरस सांपों से उनका जहर निकलवाते हैं और ये एंटी वेनम जो हॉस्पिटल्स में लगता है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओडर जज, अब ये डिओड्रेंट्स एंड माउथ वॉश के लिए जो एक्चुअली फ्रेग्रेंस या स्मेल होना चाहिए वो किस लेवल पे होता है, ये ओडर जज करते हैं सर्टेन ह्यूमंस। तो स्वेट और ब्रेथ का स्मेल लेना एनीवेज ओडर जज भी होते हैं। पेट फूड टेस्टर, तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू पे पेट्स के जो फूड होते हैं उसे भी टेस्ट करके देखते हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, हाँ ये मुझे ज़रा हटके लगा। ये एक तो है कि सबमरीन कुक है वो ही प्रिपेयर्स मील इन टाइट हाई प्रेशर एनवायरमेंट ऑफ अ सबमरीन। एक तो सबमरीन इतनी उसमें सब टाइट जगह में बैठते हैं, उसमें से खाना भी कुक करना है, कितना मतलब यूनिक होगा। उससे ज़्यादा यूनिक तो मुझे ये लगा भाई, लाइन स्टैंडर गेट्स पेड टू वेट इन लॉन्ग लाइन्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और इवेंट्स टिकट। नाउ दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि किसी क्यू में आप खड़े हैं घंटों से, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, दैट्स इंटरेस्टिंग जॉब एंड ए यूनिक वन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आज आपको मिल रहा है 128.25 रुपये। और जब भी आपको भारत पैसे भिजवाने हों तो ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं ब्रांच ऑनलाइन या बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.

0: Disha Basmati Rice, available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all, and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom, and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
5: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
6: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
5: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
6: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
7: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
8: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
7: दर्शन पण अने यूरोप पण।
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चाइल्डहुड, बट मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया आर फोर्स्ड टू लीव स्कूल फार टू अर्ली। क्राई यूके इज हेल्पिंग चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल एंड बिल्ड ब्राइटर फ्यूचर्स। जस्ट £25 कुड हेल्प टू चिल्ड्रन कंटिन्यू देयर एजुकेशन। विजिट www.ukcry.org एंड help to make a difference.
9: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
10: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a beautiful track. Jiva film se sunaya aap sabhi ko Amit Kumar aur Asha Bhosle ki awaaz mein ye geet. It's 28 minutes past 11. 28 minute ho chuke hain 11 baj ke. Aap sabhi ne tune in kiya hai Laika Gold Radio London mein aur saath में लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. तो दिस इज द रितु शर्मा शो. माय नेम इज अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर द रितु शर्मा शो. जनरली आप मुझे सुन रहे हैं वीक डेज में शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक द इवनिंग शो विद अश्विनी में, मंडे से लेके फ्राइडे तक. तो जिन्होंने मुझे वीक डेज में नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा. आई प्रॉमिस मस्ती मजा इंटरेक्शन वाला शो ज्यादा ही होता है. अभी तो चल ही रहा है और भी होता ही है. ओके, सो आज का सेकेंड आर का जो फीचर है यादें में आज मैं बात करने वाली हूँ देवानंद एंड साधना के बारे में. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर देवानंद एंड साधना. इनकी पेयरिंग जो है ये बहुत सेलिब्रेटेड पेयर था बॉलीवुड फिल्मों में एंड इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, उसमें से स्पेशली हम दोनों और असली नकली. इन फिल्मों से मैं आप लोगों के लिए आज दो गीत लेके आई हूँ. पहला गीत मैं आप सबको सुना रही हूँ हम दोनों फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1961, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. एंड सेकेंड ट्रैक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है असली नकली फिल्म से. 1962 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, तुझे जीवन की डोर से बांध दिया है. दोनों भी ट्रैक्स मेरे बड़े ही फेवरेट हैं एंड आई एम श्योर आप सभी इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे. अगर वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन आई थिंक ये वाले गीत ज़रा मीडियम वॉल्यूम में बड़े अच्छे लगते हैं ना.
0: लाइका गोल्ड Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

What a beautiful track. इसके पहले भी जो आपको ट्रैक हमने सुनाया हम दोनों फिल्म से ब्यूटिफुल एंड दिस वन इज लाइक ओ माई गॉड. मैं आप सबको तो कह रही थी कि वॉल्यूम लो करके ही सुनना चाहिए या मीडियम रख के ही इसे सुनना चाहिए. मैं खुद भी एक्चुअली जनरली स्टूडियो में होता है कि ये चार दीवारें, बड़े बड़े स्पीकर्स, चार पांच स्क्रीन और हम और जो सामने कंसोल रखा होता है, तो मैं खुद भी इस गीत को ना मीडियम वॉल्यूम पे आंखें बंद करके सुन रही थी. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस इज, है ना. एंड कितना प्यार से बोलना है कि यार अब तो गले पड़ चुकी हो तुम, है ना, अब तो तुम कितना भी परेशान करो, अभी जुल्म सितम, वो जुल्म सितम, एक्चुअली जुल्म सितम तो थोड़ा नेगेटिव ही इमोशन हो गया, लेकिन जिस प्यार से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया ना, वो जुल्म सितम लगता है आह जैसे पनीर की सब्ज़ी बनी हो. आह आने दो, आने दो जुल्म सितम सर आँखों पर. आई

0: पॉडकास्ट अपडेट।
1: पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 15 बाहर आ चुका है, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड्स। इसे होस्ट किया है डॉनी ब्रास्को ने। वेडिंग्स का जो कल्चर अभी चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन गया है। क्या ये इंटीमेट वेडिंग्स जो हैं ये नई लग्जरी बन गई है? ऐसी बहुत सी बातों पे और सवालों पे इस पॉडकास्ट में बातचीत हुई है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, अमेजन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर देखिएगा।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Leica Gold travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
7: 100% halal meat prepared with care every day.
6: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
7: And don't forget, get your favorite frozen items too.
6: Find Tariq Halal inside Chelmsford bus station parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
7: There is only one.
8: London Entertainment दी सब तो वड्डी रात आ रही है। Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, ते होर जबरदस्त artists. 9th May, शाम 6 बजे, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets, call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ।
6: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
10: Travel in style, offer the best prices in flights and holidays to any destination of your choice. Call now for your early bird discount, 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Travel in style, fully bonded for your peace of mind. Travel in style. Travel in style. Travel in style.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है pre-booking sale का शानदार मौका। अब सभी Bosch boilers पर सीधे £350 की बचत। 25 kilowatt boiler सिर्फ £1,890 से पूरी तरह fitted। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की Bosch guarantee। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208-150-2025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Weddings and Beyond with Donnie Brasco.
14: It was these two creators and they had a wedding and

0: they only had about 20 people, and they were able to do individual introductions of all their guests to introduce them to other guests and how much they meant to them in their life. And I just thought that was so nice. I mean, if I did that for 300 people, they'd be there for a week.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
2: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: For £1, you'll get 128.85 Indian rupee, 379.88 Pakistani rupee, 167.45 Bangladeshi taka, 87.39 Afghan afghani, 437.98 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars and 176.05 Kenyan shilling.
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This song is brought to you by Kumar Sanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.
5: Ye hai.
4: Leica Gold.
5: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
3: Rajasthan Royals and Gujarat Titans के बीच मैच शुरू होने वाला है 3:14 के बाद, यानी कि हमारे अपने दोपहर 3 बजे.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: मैं मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 11. 11:47 हुए. अब मैंने क्यों 47 बोला कि 35, मतलब 35 के ऊपर जो है मेरी हिंदी की गिनती जो है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है, एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क अभी, है ना. इसीलिए मैंने आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में बोल दिया है. 9th of May एंड सैटरडे, तो वीकेंड आपका हमारा साथ में सेलिब्रेट करना चल रहा है. आप लोग मुझे सुनते हैं जनरली वीकडेज में शाम 7 से 10 बजे के बीच, मंडे से फ्राइडे द इवनिंग शो विद अश्विनी में. टुडे आई एम कवरिंग द रितु शर्मा शो. सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ, और हमारे सारे प्रेजेंटर्स लाइंड अप हैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए. खूब जोर शोर से तैयारियां करके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस माध्यम पे जब वो आके यहाँ पे बैठते हैं और आपका वीकेंड वो और हम जब साथ में मनाते रहते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. बहुत सारे लोग अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने आते से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे लेके आप बड़े पर्टिकुलर हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई गार्डनिंग का हमें शौक है, तो जब भी हम कहीं और जाते हैं ना, तो जिनके घर पर कहीं गए, कहीं होटल में रुके, किसी नए जगह पे गए, तो वहां जाके वहां के गार्डन को जरूर देखते हैं, वहां पे कौन से फूल पत्ती पौधे आए वो भी देखते हैं जी. अब बाहर जाने पे से एक्चुअली आई रेड अ ब्यूटीफुल आर्टिकल विच सेड अबाउट कि जब भी कोई इंसान ट्रैवल करता है तो ट्रैवलिंग उसकी लाइफ बदल देती है. आपने अगर तमाशा फिल्म देखी होगी तो तमाशा फिल्म में भी रणबीर कपूर घूम फिर के आते हैं, फिर अपने एक जो एक उनकी स्ट्रक्चर्ड लाइफ रहती है उसमें वो खो जाते हैं वापस. लेकिन दीपिका पादुकोण जो है उसकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंज आया हुआ रहता है. सो ये करता क्या है आपके लिए जब भी आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, और एक्चुअली सोलो ट्रिप्स ना जाना चाहिए. मैं जाती हूँ कई बारी सोलो ट्रिप, बट अगेन आई गो टू इंडिया, मुझे जाना है लंबा किसी हिमालयन ट्रिप पे जाना है डेफिनेटली. टोटली बिल्कुल अननोन क्राउड के साथ में जाइए, नए लोगों के साथ में जब आप ट्रैवल करते हैं और जब आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं तो वो आपको कितना कुछ सिखा के जाता है, और ट्रैवलिंग हमेशा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाइए, पेरेंट्स के साथ जाइए, सिबलिंग्स के साथ जाइए, ये ट्रिप्स तो करनी चाहिए, लेकिन सोलो ट्रिप बहुत बहुत ज़रूरी है। वो जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, वो जो सेल्फ रियलाइजेशन आता है जब आप सोलो ट्रिप्स करते हैं, उसके बाद में लिख लीजिए मेरी तरफ से कोरे कागज़ पे कि आपकी लाइफ में कुछ तो 360 डिग्री चेंज आएगा, किसी ना किसी एक चीज़ में ज़रूर चेंज आएगा। क्योंकि हम ह्यूमंस जो है ना बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसी प्रजाति हैं, ऐसी कैटेगरी हैं जो खुद को चैलेंज करते हैं कि कुछ ना कुछ नया मुझे ज़िंदगी में करना है। तो ऐसी चीज़ों पर और भी बातें होने वाली अगले घंटे में। अब धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं 12 o'clock की न्यूज़ की तरफ।
6: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM।
1: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
6: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
6: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
8: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
7: Call today on 01923 883 100,
8: or go to skylordcruiseandholidays.com.
7: Book with confidence.
8: We're Atoll protected.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
11: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
11: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
11: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
11: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, Tamil and other languages. Contact कीजिए Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold. Feel good classics all day. Leica Gold.

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: ब्रेन ब्रोक फिल्म से सुनाया आप सभी को ये ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर। शो का नाम है द रितु शर्मा शो। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितुज शो टुडे। थर्ड आवर में जनरली होता है थ्री वर्ड गेम, तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये तीन शब्द। आप सबको बताना है कि ये कौन सी फिल्म से मैंने गीत चुना है। ओके, दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड इन 1973। मुमताज़ और फरीदा जलाल पे ये गीत फिल्माया गया। कौन सा फिल्म, कौन सा गीत, चलिए बता दीजिए। बाबू कोई शहरी, ठीक है, मुझे बताइए। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, मुमताज़ फरीदा जलाल पे फिल्माया गया ये गीत बाबू कोई शहरी। ये कौन से गीत की मैं बात कर रही हूँ, असाइनमेंट ले लो। कितने टाइम से आराम से सब बैठे ना, अब तो खाना खाने भी बैठ गए। कोई ना, बीच में टाइम है, ज़रूर बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के लिए आपको मिलेगा 128 रुपीस एंड 25 पैसे। रिमेंबर, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, इंडिया भेजना चाहते हैं, ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप, तो ज़रूर याद रखिएगा SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco, we know that right now, every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
3: ये है
4: लाइका गोल्ड।
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208 782 8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
8: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
8: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
12: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.

0: कितने प्यार से अपने प्यार को जताया गया है इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज में। लव इन टोक्यो इस फिल्म से आप सबको आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख, पूरे सप्ताह हमने आपको आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख की गीत सुनाए, उसी से मैं लेके आई हूँ ये गीत आप सबके लिए। अगला गीत हम लेके आए हैं यादों की बारात से, एंड सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक। सारे के सारे गीत इतने सुंदर और इतने मंझे हुए ये गीत होते हैं, और जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, तो ये जो सुकून यहाँ मिलता है इस हॉट सीट पे, एक तो आप लोगों से होती है गपशप, इंटरेक्शन होता है, फन मस्ती चलती रहती है। हम आप लोगों के घर के मेंबर्स तो ऐसे ही बन चुके हैं रेडियो द्वारा, क्योंकि 24 घंटे आपके घर में रहते हैं ना। ओवरनाइट सर्विस भी होती है, गोल्ड नाइट हमारी जो ओवरनाइट सर्विस है, जो लोग रात में काम कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ज़रूर गोल्ड नाइट्स को सुनिए। अच्छा, मुझे भी सुनिए भाई, बहुत से लोगों ने शायद मुझे नहीं सुना है। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर द रितु शर्मा शो टुडे, एंड वीकडेज में आप हर शाम फिलहाल मुझे सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी में, मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10, पांचों दिन वेरिएशन होती है, मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन वहां पे भी चलते रहता है। और एक सर्वे आया है रिगार्डिंग मेन, अब ये क्या सर्वे है बात करते हैं इसके बारे में कुछ ही देर में। नाउ दिस ट्रैक थोड़ा मीडियम से अगर ऊपर करना चाहे तो कर सकते हैं वॉल्यूम, फैंटास्टिक ट्रैक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley,
2: soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैंने आप सबसे पूछा भाई जो थ्री वर्ड गाना है वो कौन सा गीत है. बाबू कोई शहरी, दिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1973. फिल्माया गया मुमताज एंड फरीदा जलाल पे. अभी भी टाइम है, फटाफट लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए आंसर, मैं वो गाना प्ले करने वाली हूँ. लेकिन उसके पहले बात करते हैं एक सर्वे की. तो सर्वे अकॉर्डिंग टू सर्वे सेंट ऑन अमेरिकन लाइफ 2021 अमेरिकन परस्पेक्टिव सर्वे, द शेयर ऑफ अमेरिकन मैन रिपोर्टिंग नो क्लोज फ्रेंड रोज फ्रॉम 3% विच वॉज इन 1990, वहां से अब 15% इन 2021 में हो गया. नाउ दिस इज 2026, तो सोचिए कि कितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं. मेन अलोन, राइट? एम आई राइट? क्योंकि ये सर्वेज जब लिए जाते हैं, जैसे हम औरतें नो फटाफट फ़ोन उठा के अपनी बेस्टीज से बात कर लिया, बहनों से बात कर लिया, अड़ोसी पड़ोसी हमारी जो फ्रेंड्स जो महिला मंडल होती है, हम लोग उठा फोन उठा के बात कर लेते हैं. इज दैट समथिंग वॉट यू डू? नहीं कर रहे हैं? शुरू कर दीजिए. ह्यूमन लाइफ एक तो बड़ी प्रेशियस लाइफ होती है, उसमें से कितना चुप बैठोगे भाई? जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिनसे बहुत टाइम से आपने बात नहीं की है, तो उठाइए फ़ोन, घुमाइए नंबर. और ये अभी ज्ञान की बात आपके लिए प्रेजेंट की अश्विनी ने. मेरा नाम है अश्विनी, मैं आती हूँ वीकडेज में शाम 7 से 10 बजे के बीच, और मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. जो मैंने गीत पूछा था, थ्री वर्ड गीत कौन सा है, बाबू कोई शहरी, दिस इज फ्रॉम द फिल्म लोफर. करेक्ट, आप सबने सही आंसर्स दिया और आप सबके लिए प्रेजेंट करते हैं ये गीत अभी. टन टन टन
0: रिची शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड, द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
5: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: Travel Hub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
8: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: हल्के फुल्के moments को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
12: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
11: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
16: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May. The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
17: Atif Aslam live in the UK.
16: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
17: Book your tickets now at AXS.
16: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio.
18: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
19: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर में आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो. दिस इज़ द मॉर्निंग शो विद ऋतु शर्मा. आज ऋतु शर्मा यहाँ पे नहीं है शो में. मेरा नाम है अश्विनी. आई हैव बिन कवरिंग हर शो. मेरे बाद आ रहे हैं सुमधुर आवाज़ वाले अनुराग जी. उनका साथ दीजिएगा दोपहर एक बजे से लेकर चार बजे तक. और उसके बाद में आएंगी हमारी सरिता सबरवाल जी. तो लाइंड अप है आपके लिए बड़े ही एंटरटेनिंग शोज. और सारे के सारे जो प्रेजेंटर्स हैं वो इतने खुश होकर यहाँ पे स्टूडियो में आते ना, आप लोग यकीन नहीं कर सकते. हम लोगों की ना जो एक पैशन की जो पराकाष्ठा होती है, आई नो इट्स वेरी वेरी क्लिष्ट हिंदी, बड़ी शुद्ध हिंदी में बात कर रही हूँ मैं, मतलब जिस लेवल का पैशन हम लोगों में होता है यहाँ पे स्टूडियो पहुँचने का, वो देखने बनता है कि सारे के सारे जो प्रेजेंटर्स पहुँचते हैं ना, उनका स्माइल, दे हैव अ ब्रॉड स्माइल. और जब वो स्टूडियो में एंटर करते हैं, ये एंड वो ये कहाँ से आता है? आप सबके प्यार से. हमेशा की तरह ऐसे ही बस एंड करने वाली हूँ शो, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई प्यार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो प्यार दो, प्यार लो. और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड आई एम श्योर आप बड़ी प्यारी प्यारी सोल्स हों जो अपनी पावर का यूज़ तो नहीं करते होंगे, है ना. और मेरा शो होता है मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 बजे तक, द इवनिंग शो विद अश्विनी. हर रोज़ कुछ नया एंटरटेनमेंट लेकर आपके लिए मैं हाजिर हो जाती हूँ. कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि अश्विनी आज यहाँ कैसे, तो आई वॉज कवरिंग ऋतु. अब ऑन दैट नोट्स आई हैव टू से कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इन्जॉय करें अपना वीकेंड. दो गीत आपके लिए छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, इसे कहते हैं बाय.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM. Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto twin city centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
2: Call 01923 883 100. Atoll protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
9: 100% halal meat prepared with care every day.
8: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
9: And don't forget, get your favorite frozen items too.
8: Find Tariq Halal inside Chelmsford bus station parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
9: There is only one.
8: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 23 23 or visit startours.co.uk.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
13: No more worries for me or you.
14: Southall Travel, at all protected.
15: Up next, Golden Rug with Unrug on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: स्वागत है आप सभी का गोल्डन राग की शुरू से सजी वीकेंड वाली इस पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ अनुराग और बैक टू बैक गानों के साथ होगी इस घंटे की भी शुरुआत। और इसके बाद हम बताएंगे आपको आज के गोल्डन वर्ड और गोल्डन राग भी, तो कहीं मत जाइए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. On Rug with Gold.

0: भाई डिस्को डांस के साथ शुरुआत की है हमने वीकेंड की, आप लोगों को थिरकाने का एक हमने बहाना ढूंढा है। फिल्म डिस्को डांसर का ये गाना सुन रहे थे आप विजय जी की आवाज में, बैकग्राउंड में भी आपको यही गाना सुनाई दे रहा होगा इसी फिल्म का ही, डिस्को डांसर का ही। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फिल्म ने एक इतिहास रचा था और खास तौर पर मिथुन दा के लिए फिल्म किसी मील के पत्थर से कम नहीं साबित हुई थी। रूस में मिथुन साहब की ये दीवानगी थी, उनका नाम मिथुन से बदलकर जिमी ही रख दिया गया था। और मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बनाता हूँ। एक बार मैं काम के सिलसिले में विंस्डर करके एक इलाका है जो लंदन में, वहाँ पर घूम रहा था और वहाँ पर मुझे एक रूस के ही सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप के यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार हैं, ना ही वो किसी और को जानते हैं, ना ही शाहरुख को ना ही अमिताभ को, लेकिन जिमी को जानते हैं। और कहने लगे आज भी हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम इस गाने को ज़रूर प्ले करते हैं। तो ये है मिथुन साहब की दीवानगी जो उन्होंने 80s के दौर में हासिल की थी। और अगर हम बात करें तो मिथुन साहब की उस दौर में एक एक्शन हीरो वाली, एक डांसर वाली इमेज नहीं थी। इस फिल्म के बाद सारी कहानी बदल गई, लेकिन उस दौर में बड़े चैलेंजेस मिथुन दा ने अपने करियर में फेस किए, क्योंकि इस फिल्म के लिए कोई भी बड़ी अभिनेत्री उस दौर की उनके साथ काम करने के लिए, आजा आजा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसीलिए इस फिल्म में उनके अपोजिट किम को, एक नई कलाकार को रखा गया। और एक और ख़ास बात है इस फिल्म में डिस्को डांसर से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर बी सुभाष साहब, बब्बर सुभाष जिन्हें कहा जाता है, वो काका यानी कि राजेश खन्ना साहब के बड़े अच्छे ही दोस्त कह लें, साथी कह लें। और खन्ना साहब ने इस फिल्म में एक ख़ास किरदार भी निभाया था, राजू चाचा का किरदार, और वो उन्होंने मुफ्त में निभाया था क्योंकि उन्हें अपनी दोस्ती जो बब्बर सुभाष साहब के साथ थी उसे निभानी थी। तो कमाल के कुछ फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। हालांकि इस फिल्म के साथ जब ये फिल्म बनकर रिलीज हुई, इसके गाने बाहर आए, तो लोग इसके दीवाने हो गए। और आज भी इस फिल्म के, खास तौर पे इस फिल्म के संगीत के जिसे दिया था बब्बी लहरी साहब ने, सब हैं उसके दीवाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने प्यारे प्यारे संदेश देने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी का जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। वीकेंड वाली पाठशाला में आप सभी का है स्वागत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 rupees and 25 paise। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.

0: Lancashire Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: A reliable airline, excellent in-flight entertainment and delicious food. All this at a low, low price. Connect with Travel in Style. Great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget. Only at Travel in Style. 0208 954 0077.
2: May को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका. कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में.
3: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
4: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
3: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fryam shape mein hai wo bachpan ki yaad.
6: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jaymin's fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur Shizwan with best quality and same ethnic taste.
5: Jaimin Fryans available at your nearest ethnic grocery stores.
7: Ek badhiya kadak garma garam chai mil jaye to aaye haaye maza aa jaye.
8: Are samjho ho gaya, royal chai hai na, ab bhi ban jayegi. Sirf packet kholo aur garam pani mein ghol lo, chai taiyar, wo bhi royal taste ke sath. Royal chai, jhatpat kahin bhi kabhi bhi.
9: वीजा प्रॉब्लम, इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
10: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
11: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kabhi-kabhi main sochta hu ki ye Majroo Sultanpuri aur Rafi saab ka bhi combination kya kamal ka tha. Us par Aasha Dai ki awaaz ka tadka, Mamta film ka ek gaana sun rahe the, Roshan saab ka sangeet aur Majroo Sultanpuri saab ne gaane ke lyrics likhe the. लेकिन कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है इस गाने में. अकेले ना फिरा करो काली घटा, मतलब क्या लफ्जों का, क्या अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया. कमाल का गाना है. लेकिन अगला जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं किशोर दा की आवाज़ में, ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जिसने इस गाने को किसी भी मूड में इंजॉय ना किया. कमाल का गाना है, एक बार फिर से सुना रहे हैं आपको. सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला, आपके लिए हाजिर है.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: किशोर दा की आवाज में डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये रोमांटिक गाना और इस रोमांस वाले मूड को अभी बरकरार रखिएगा, क्योंकि अगला गाना जो है ना वो आपको जाने नहीं देगा इस रोमांटिक मूड से निकल कर। बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है, लेकिन उससे पहले बात होगी इनकी। भाई आपको तो मालूम है कि हमारे किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू साहब एक रात के लिए एक शाम के लिए लंदन में हाजिर होंगे और इनका शो होगा रॉयल अल्बर्ट हॉल में बैंक हॉलिडे के मौके पर 25 मई। और अगर आपको इस खूबसूरत इवेंट का हिस्सा बनना है तो टिकट मास्टर पर जाइए और वहां से अपने वेन्यू का टिकट हासिल कीजिए। इसके अलावा हम हैं तो हैं ही वहाँ पर एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: कमाल है भाई, जैसे ऋषि जी ने डिंपल जी को जाने नहीं दिया था, आपको भी जाना कहीं नहीं है। थोड़े से अंतराल के बाद हम फिर से मिलेंगे एक प्यारे से नगमे के साथ, रवि साहब और सुषमा जी की आवाज। हम किसी से कम नहीं, कहीं मत जाइए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. ये है Lyca Gold. Lyca Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
1: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है। फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026। लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स। 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल। फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367। एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca रेडियो नेटवर्क। Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
7: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
8: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
7: दर्शन पण अने यूरोप पण।
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें

0: लता जी की आवाज में गुलजार साहब का लिखा हुआ घर फिल्म का ये गाना बेहद ही शानदार, बेहद ही खूबसूरत, और आपको इसी के साथ बताने का मौका भी आ गया है। अगले घंटे आप बताओ हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड क्या है, जिसके लिए जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती, वो है घड़ी, वक्त, समय। तीन तीन ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, घड़ी, वक्त, समय। याद रखें घड़ी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि घड़ी पर मैं भी फोकस कर रहा हूँ। 4 बजे से पहले सबको एंटरटेन करना है। सुनते रहें गोल्डन राग वाली वीकेंड वाली पाठशाला।
1: ये है लाइका गोल्ड। Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour our line.
2: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
3: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
2: Call today on 01923 883 100,
3: or go to skylordcruiseandholidays.com.
2: Book with confidence.
3: We're Atoll protected.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: मॉम, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
6: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders used it.
8: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
10: Wow! So, sending money to India is instant?
9: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
10: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
12: फोन 0208574 8410।
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference. Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, details, WhatsApp on 073 75 22 4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
3: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
4: On Rug with Golden Rug.

0: लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की खूबसूरत आवाज में, जिसने 1989 में तहलका मचा दिया था अब इस कॉम्बिनेशन ने, मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना सुन रहे थे और इस गाने को हम तक पहुंचाया है अनुषा रजानी जी ने और सुमित चौरसिया जी ने। और पहला गाना पृथ्वी फिल्म का हमने आपको सुनाया था, उदित नारायण साहब और साधना सरगम जी की आवाज में, जिस घड़ी तुझको रब ने बनाया होगा। और ये गाना सोचिए किसने सुनाया होगा, किसी ने नहीं, ये गाना हमने आपको गोल्डन राग की तरह से सुनाया है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगला गाना जो आने वाला है, ये गाना मैं खुद पहली बार सुनने वाला हूँ, विंटेज गोल्ड वाला गाना है। लेकिन उसके बाद जो गाना आने वाला है वो है गाना सबसे ज़्यादा जिसे लोग सुनना चाहते हैं और इस गाने को आज की थीम को मद्देनज़र रखते हुए हम तक पहुँचाया गया। तो आने वाले दो गाने हैं बड़े ही स्पेशल, सुनते रहें वीकेंड वाली सुरों से सजी इस पाठशाला को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 128 रुपीज एंड 25 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
3: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
2: Hey, MTD mate, digital taxes.
3: Mm-hmm. It's an extension down Station Road on the corner.
2: Dave, digital taxes mate.
3: Yeah, probably will need some 2x4s. I'm gonna go take the van in for a new fan belt, squeaky.
2: Hey, Making Tax Digital, Dave.
4: Avoiding MTD. Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Kesha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
1: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र.
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
6: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
7: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and
10: it could be you.
9: Yeah, what he said. Lotto from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
11: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
12: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Do ghadi wo jo aas, aaj aas, aa baithe. Gateway of India film ka gaana. Rafi saab Lata ji ki awaaz mein. मदन मोहन साहब का संगीत था और ये गाना मैंने कहा था ना कि मैं पहली बार खुद सुन रहा हूँ. बड़े कमाल के बोल, गाने के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण साहब ने और ये गाना हम तक पहुँचाया है करसन पिंडोरिया, साजिब और गौरव शर्मा जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. अब घड़ी से निकल कर समय की तरफ बढ़ते हैं और अगला गाना आपको समय से जुड़ा हुआ सुनाते हैं. सुनते रहें, आप सुन रहे हैं गोल्डन राग वीकेंड वाली सुरु से सजी पाठशाला.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: किशोर दा और आशा दाई की आवाज में करम फिल्म का एक गाना, समय तू धीरे धीरे चल। काश समय हमारे बस में होता और हम उसे अपने हिसाब से चला पाते, लेकिन हकीकत ये है कि हमें ही समय के साथ चलना होता है। और ये गाना हम तक पहुंचाया है बिल्कुल समय पर प्रज्ञा जी और कंचन जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ,
1: लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है माइथोलॉजिकल शो हमारे राम। और स्टार होंगे इसमें बहुत ही जाने माने एक्टर आशुतोष राणा एज रावण, और राम का किरदार निभाएंगे राहुल आर बुचार। और ये आपको महाशो देखने को मिलेगा बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई लंडन्स इवेंटिम अपोलो में।
3: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, आशाताई और रफी साहब की आवाज में नीला आकाश फिल्म का ये गाना, मदन मोहन साहब का संगीत और राजा मेहंदी अली खान साहब के लिखे हुए बोल, कमाल का ये गाना। और ये गाना हम तक पहुंचाया था निर्मला जी और प्रिया जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगला गाना घड़ी से रिलेटेड आने वाला है, थोड़ी देर में सुनाते हैं आपको।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.73 पाकिस्तानी रुपीस 379, बांग्लादेशी टका 167.45, अफगान अफगानी 87.17, श्रीलंकन रुपीस 438 एंड 1 US डॉलर 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at 111 pounds and 29 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham,

0: Hounslow or Crowley.
1: ये है लाइका गोल्ड
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: IPL 2026 का 52nd यानी कि 52वां ये मुकाबला है जो कि जयपुर में खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहां राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। थोड़ी देर में यानी कि 3 बजे मैच शुरू होने वाला है।
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. LYCA. This is Leica.

0: लता जी की आवाज में अलबेला फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था प्रदीप जी और दिनेश पोपट जी ने। अगले गाने का हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जिसने जिसने भेजा उनका नाम जरूर बताएंगे। अमित पटेल जी, अमिता जी, स्वीटी जी एंड राजेंद्र सिंह जी, आप लोगों ने जिस गाने को सुनने की दरखास्त की है वो गाना जरूर प्ले होगा, क्योंकि वो आज का गाना बनता भी है। सुनते रहें, अगले घंटे होगी मुलाकात गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस के साथ।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM. Looking for your next cruise getaway?
2: Explore the Mediterranean, Northern Europe, the Caribbean, or even around the world. With Travelling Style, every trip is tailored to you.
1: From relaxation to adventure. Call 0208 954 0077
2: or email info@travellingstyle.co.uk.
1: 24/7.
2: Travelling Style,
1: where your dream holiday begins.

0: मुन्ना भाई मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजों में 20 साल बाद फिल्म का ये गाना हमने सुनाया। और इससे पहले कि मैं आपको आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि सेकंड आवर आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम में बहुत सारे गाने हमारे पास आते हैं, लेकिन मुश्किल यही होती है कि हमें 8 या 10 गाने ही सिलेक्ट करने होते हैं। बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं आ पाता है, उसके लिए माफ़ी माजरा चाहूँगा, लेकिन आज नहीं तो कल आपका नंबर ज़रूर आएगा। कोशिश पूरी रहती है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, लेकिन क्या करें, टाइम समय की बाध्यता है, इसीलिए हमने आज की थीम रखी थी वक्त समय घड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस आपको जल्दी से बताते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस ये हैं कायदे प्लस कानून कि हम आपको तीन ऑप्शन देंगे, ए बी एंड सी। जो भी ऑप्शन आपको दिल से पसंद आए उसे आप वोट की तरह कास्ट करें हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर, और जिस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो गाना हमेशा की तरह आज भी बनेगा आज का गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग का, आपके सामने ये रहा ऑप्शन ए, एक तेरा साथ हमको, फिल्म का नाम है वापस। ऑप्शन बी है आ लग जा गले दिलरुबा, फिल्म का नाम है 10 लाख। ऑप्शन सी है तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे, फिल्म का नाम है पारस। अब इन तीनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सुनना है और उसे वोट की तरह हमारे स्टूडियो के नंबर पर कास्ट करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है एक तेरा साथ हमको जान से भी प्यारा है, फिल्म का नाम है वापस। ऑप्शन बी है आ लग जा गले दिलरुबा, फिल्म का नाम है 10 लाख। और ऑप्शन सी है तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे, फिल्म का नाम है पारस। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें, जब तक है मौका लगाते रहें चौका।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीज एंड 25 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और यूनो SBI का यूनो मोबाइल ऐप से भी आप अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold. Laika Gold.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है। फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस ABPD अवार्ड्स UK 2026। लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स। 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल। फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367। ABPD अवार्ड्स UK 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
8: रेडियो।
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
11: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
12: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
11: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
12: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
11: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
12: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
11: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
12: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
9: મિનાર જ્યુલર્સ, અગર આપ સોના બેચના ચાહતે હૈ યા વેલ્યુએશન કરવાના ચાહતે હૈ તો ઉસકી સહી કિંમત કે લિયે તશરીફ લે જાઈએ મિનાર જ્યુલર્સ પર 81 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
7: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी की आवाज में इससे खूबसूरत गाना क्या हो सकता है, हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारिक जी की फिल्म से जुड़ा हुआ बहारों के सपने। लेकिन अब हकीकत से रूबरू होने का एक बार फिर से आ गया है मौका, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आज के गोल्डन रॉक के ऑप्शन से एक बार फिर से दोहराइए। भाई चलिए पेशे खिदमत है आपके लिए एक बार फिर से आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शन। ऑप्शन ए है एक तेरा साथ हमको, फिल्म का नाम है वापस। ऑप्शन बी है आ लग जा गले दिलरुबा, फिल्म का नाम है 10 लाख। और ऑप्शन सी है तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे, फिल्म का नाम है पारस। अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने ऑप्शन को टाइप करिए और हम तक उसे वोट की तरह कास्ट करें। अगला गाना दिल को धड़काने के लिए काफी है। सुनते रहें गोल्डन राग संग सुरों से सजी वीकेंड वाली पाठशाला।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Wahi hota hai jo manzoore khuda hota hai. Shailendra Singh ji aur Asha Tai ji ki awaaz mein Rafu Chakkar film ka ye gana. Rafu ko Rafu Chakkar. लेकिन आप लोग बिल्कुल भी रफू चक्कर मत हो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए, अपने अपने वोट कास्ट करते जाइए. अगला गाना जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, जिन्होंने सारा जग जीत लिया अपनी आवाज़ के जरिए. फिल्म का नाम है प्रेम गीत, बड़ा ही प्यारा गाना है.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: back of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: भाई आज बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है. दो गानों के बीच बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन. लोगों ने भर भर कर वोट किए हैं, लेकिन जीतना तो भाई एक ही को है, बस टाई ना हो जाए. अगला गाना रफी साहब के बाद में सुनिए, मजे लीजिए.
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price
3: at all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.

0: Asia Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Every morning a shopkeeper opens his doors.
2: Lights on, shutters up, staff ready.
1: But today's customers don't start on the high street.
2: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
1: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
2: They walk into your competitors.
1: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
2: 100% halal meat, prepared with care every day.
3: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
2: And don't forget, get your favourite frozen items too.
3: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
2: There is only one.
4: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
6: high appreciation.
7: इन दुबई
8: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए यूनिक मसाला चाय इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार
9: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Choose buybullion24.co.uk today.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
2: This Eid skip the queues and save with Ambala pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है The Star Tours Experience. Visit startours.co.uk.

0: गोल्डन राग संग रवि साहब की आवाज में प्यार का राग, तेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना सुनने थे आप। और इसी के साथ बता दें आपको कि आज के लिए हो चुकी हैं वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग जो कि आने वाला है थोड़ी देर में। देखते हैं क्या सरप्राइज मिलने वाला है आप सबको।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.71 पाकिस्तानी रुपीस 378.97 बांग्लादेशी टका 167.38 अफगानी 87.10 and 1 US dollar 1.36.
2: Leica radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL 2026 का 52वां मैच यानी कि 52nd मैच हो रहा है जयपुर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान, जहां गुजरात टाइटंस पूछ रहा है केम जो भैया 8.3 ओवर्स का हो चुका है खेल और 104 रन रख चुके हैं बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान के साथ। अगला गाना आज का गोल्डन राग।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
5: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में वापस फिल्म का कितना शानदार गाना है ये। और आज जैसे कि मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, सारे वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग गानों में, लेकिन भाई हमें तो उसी को जिताना है जिस गाने को मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट्स। तो चलिए नाम लेना शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, किसने किसने इस गाने को दिए हैं अपना कीमती वोट और विजय बनाया है इस गाने को। निर्मला जी, अमिता जी, नजलीम हुंजन, अमित पटेल, हंसा वोरा, रानी सुनाहे, हसुमती, मिसिस इकबाल बेगम, रंजना कुकाड़िया, रानी जी फ्रॉम स्लाव, सुमित चौरसिया, कंचन, पंकज वर्मा, सालिम अख्तर, घनश्याम सिंह चौहान और सुमन दुबे जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को सबसे ज़्यादा वोट देकर आज का गोल्डन राग बनाने के लिए। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी। अब मेरा हो रहा है आपसे वक्त अलविदा कहने का, कल होगी इसी वक्त मुलाकात, लेकिन महफिल होगी सुपर संडे वाली। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: वेल, ये चार लेटर्स से बना एक प्यारा सा वर्ड लव, LOVE, किसको सुनना अच्छा नहीं लगता है। सभी इससे प्यार करते हैं और सभी हर टाइम सुनना भी चाहते हैं। और हम हमेशा अक्सर कह देते हैं ना, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। हाँ, तो आप भी जल्दी से पूछ लीजिए, डू यू लव मी, LOVE, तो शुरू हो जाइएगा। राइट, बता दूं कि ये फिल्म कालिया से चुना था गीत मैंने। कालिया कौन से ईयर में आई थी, डू यू रिमेम्बर? नहीं याद आ रहा है। 1981 में आई थी ये फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, परवीन बॉबी थी, आशा पारिक थी, कादर खान थे, अमजद खान भी थे और प्राण भी थे। एंड टीनू आनंद ने इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म का संगीत था राहुल देव बर्मन जी का। और आपने जो गीत सुना उसमें आवाज़ें किसकी थी, याद आया या नहीं याद आया? मैं बता देती हूँ, उसमें आवाज़ें थी आशा भोसले एंड किशोरदास की। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जिस गीत के साथ, वो गीत मैंने चुना था फिल्म दहक से। बहुत खूबसूरत गीत है और मुझे हमेशा बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया हो तो इशारा बनता है ना, इशारा कर दीजिए कि आपके दिल को भी ये गीत बहुत भाया। इस फिल्म के हीरो थे अक्षय खन्ना, हीरोइन थी सोनाली बेंद्रे एंड डैनी डेंजन गप्पा ने भी इस फिल्म में काम किया था। फिल्म का संगीत आदेश श्रीवास्तव का भी था और आनंद मिलन का भी था। कुछ गीत उन्होंने कंपोज किए थे, कुछ आदेश जी ने किए थे। सो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे कुछ गीत और कुछ देव कोहली साहब ने। गीत आपको पसंद आए हैं, आपके मैसेजेस बराबर मुझे मिल रहे हैं। वाल, थैंक यू सो मच, कितने सारे मैसेजेस मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आज आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो मैं जल्दी से बता दूं कि आज आपको क्या रेट मिलने वाला है SBI UK वालों के ज़रिए से। इंडिया में कहीं भी पैसे आप ट्रांसफ़र कीजिएगा, बहुत आसान काम है। यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन आल्सो गो ऑनलाइन और योनो SBI UK का अपने अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है तो डाउनलोड, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि घर बैठे ही पैसे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 128 rupees and 20 paisas अगेंस्ट 1 sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
2: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है. कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077. दैट्स 0208-954-0077. आपकी मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
3: ट्रेवल इन स्टाइल.
4: ट्रेवल इन स्टाइल.
3: ट्रेवल इन स्टाइल.
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
6: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मेरे बहुत से साथी बता रहे हैं कि क्या कॉमन है आज के गीतों में. थैंक यू एवर सो मच, बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुनते हैं आप प्रोग्राम को. पर सबने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं. संध्या भाव सर, महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ एरो, अर्जुन जी सलमा मेडस्टोन में, एंड रानी जी इन स्लाव, सहर जी थैंक यू सो मच, एंड फारूक मोहम्मद आप सुन रहे हैं, उल्लास इन टोरंटो, हंसा वोरा जी, भारती जी, निर्मला जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अब आगे बढ़ते हैं. मिसेस शेख आप भी सुन रही हैं, इंजॉय करिए. इंतशाब थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Well, आपको याद आया कब सुना था ये गीत लास्ट, और यही भी याद है कि किस फिल्म से था? अगर याद है तो जरा जल्दी से लिखकर मुझे बताइए कि किस फिल्म का गीत था। ये बता देती हूँ कि नूतन थी इस फिल्म की हीरोइन एंड 1963 की थी ये फिल्म।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: Updates for London at Breakfast and Drive.
1: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
2: it could be you.
1: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
3: This is Like a Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
7: 100% halal meat prepared with care every day.
6: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
7: And don't forget, get your favourite frozen items too.
6: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
7: There is only one.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
12: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
13: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
14: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
12: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
14: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
12: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू
14: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
7: This Eid skip the queues and save with Ambala pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likearadio.com
0: Like a Radio finalist at the Radio Academy Arias 20

आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ें आपने सुनी हेयर ऑन लाइक रेडियो नेटवर्क के लाइक गोल पर। इस वक्त आपका साथ निभा रही है सरिता और मुझे उलाश जी, आपका बिल्कुल सही जवाब था, बंदनी

भी जब प्यार हो जाता है तो चैन कब आता है ना, नहीं आता, कभी नहीं आता। अभिलाषा था इस फिल्म का नाम, 1968 की फिल्म, लता जी एंड किशोर दा की आवाज़ें आपने सुनी, आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ों में ये गीत।

0: क्या कर रहा है रे?
1: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
7: खातून कौन थी?
8: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
7: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
9: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th में से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मे।
10: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
11: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
10: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
11: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
10: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
14: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
13: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
14: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
13: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
18: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road, ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
19: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait, the offer ends on the 10th of May.
20: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
19: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
20: Call today on 01923-883-100
19: or go to skylordcruiseandholidays.com.
20: Book with confidence.
19: We're Atoll protected.
21: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
22: Leica Radio Network.

0: What a beautiful composition and किशोर दा की आवाज़, वाह बहुत प्यारा गीत था। और ये गीत किस पर पिक्चराइज हुआ था, याद आया आपको? फिल्म का नाम था कुदरत। मैं बताऊँ ये आपको पता है? पता है, कहती हैं सरिता हमें पता है, राइट। और जो मेरे साथी बराबर मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, चलिए मैं चॉइस दूंगी आपको दो गानों की कि उन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज्यादा करीब है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, इनके जरिए अगर पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन। योनो SBI UK का आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है तो बड़ी आसानी से घर बैठे कीजिएगा। और आज आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले दे रहे हैं ये 128 rupees and 25 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
3: It could be you.
2: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
4: Like a gold.
5: Keep calm,
6: Nilo,
5: keep calm.
6: Keep calm,
7: bol, bol, ke. Kaam
8: vasla puri karta hai. Sala kul ka deepak
9: samjhe the. 15th May ko Prajapati Pandey lekar aa rahe hain full on confusion aur double dhamaka. Kaun patni, kaun wo? Sawal bahut hai, answers aur bhi entertaining. Pati patni aur wo do. Parivar ke saath dekhiye 15th May se cinemas mein.

0: कितना खूबसूरत गीत, और ये गीत भी मैं लास्ट आवर में प्ले करना चाहती थी लेकिन वक्त की कमी के कारण वो गीत नहीं शामिल हुआ, लेकिन ऐसे गीत प्रोग्रामों में हम सुनाते रहते हैं ताकि आपका मनोरंजन कर पाएं। आपकी बहुत सारी तालियों का और बहुत सारे एप्रिसिएशन के लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और एक मैसेज मुझे मिला है, किसका ये है, स्टीवन एच में प्रोग्राम सुन रही हैं रंजना खुकाडिया, एंड इन्होंने कहा कि प्लीज़ मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी इस गीत की, आपने नहीं प्ले किया था, कैन यू प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। तो वो गीत है गीत गाया पत्थरों ने। चलिए महेंद्र कपूर साहब और आशा जी की आवाज़ों में गाया हुआ गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, लेकिन यहीं मैं आपको दो गीतों की चॉइस दे रही हूँ, उनमें से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? ओ दिलबर जानिए तेरे हो गए हम, समथिंग लाइक दैट, हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत था, और दूसरा गीत है दिल ब दिल से प्यारे कारवां फिल्म का गीत। कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है? जो गीत आपको ज़्यादा पसंद है आई बी प्लेइंग दैट सॉन्ग। तो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिएगा, ओ दिल बर जानिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ हसीना मान जाएगी इस फिल्म का गाना, या फिर दिल बर दिल से प्यारे लता जी की आवाज़ में गाया हुआ फिल्म कारवां का गीत। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से बताइए, और बता दूं कि हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गया ये गीत किसने आप तक पहुँचाया?
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भी यही मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन एंड इंद्रानी एंड संजय, और उनके साथ होगा 515 बैंड, और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं सभी के सभी, एंड इट्स टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल में ये प्रोग्राम होने वाला है इन एसेक्स, एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो, सो इस बात को याद रखिए।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca bowl today.
1: So, रंजना जी तो खुश हुई और अब जिस दो गीतों की मैंने आपको चॉइस दी थी उनमें से ज़्यादा वोट्स जिस गीत को मिले हैं वो गीत प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा है।
2: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold 107.9.

0: में सनम हम गम तेरे और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे।
1: गीत सुनकर जिन जिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है उन सब के चेहरे में देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि आपको गाना बहुत पसंद आया। सादिया आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। मिसेस शेख आप सुन रही हैं, तोची जी थैंक यू आपके मैसेजेस का भी, और इंतशाब थैंक्स अ लॉट। आप कौन हैं भाई? ओ जिन्होंने गाने की रिक्वेस्ट की थी, यस रंजना जी, महेंद्र बजारिया जी, संतोष जी, वत्सला जी, करसान पंडोरिया, उल्लास इन टोरंटो, रंजन आप सबका बहुत बहुत थैंक्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स
1: राइट भी लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट बिल्कुल रेडी है। एपिसोड 15 जो है वेडिंग्स एंड बियॉन्ड्स, होस्टेड बाय डॉनी ब्रास्को। आर वेडिंग्स नाउ जस्ट अ बिग इंस्टाग्राम शो, आर इंटीमेट वेडिंग्स द न्यू लग्जरी। काजल फ्रॉम लाइका गोल्ड मेक्स एन अपियरेंस टू, सो जरूर देखिएगा प्रोग्राम। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: It's the cinematic event of the year. Critics are saying a stunning, breathtaking triumph of savings. It's 2-for-1 cinema tickets from Compasa Market in cinemas all year.
4: That sounds like a great movie.
3: Sergey, it's no movie. It's 2-for-1 offer on cinema tickets.
4: Oh, yeah. I knew that.
3: Get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday with the Compasa Market app. The simplest way to save.
5: When you take out a qualifying product to Compasa Market, one membership per year, participating cinemas, two standard tickets only, cheap as free. T's and C's apply.
6: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
9: Atif Aslam live in the UK.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and karak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
14: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
15: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
14: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
17: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
16: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
17: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
16: दर्शन पण अने यूरोप पण।
17: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
16: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स।
17: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
8: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला। प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर। यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन or in store, from stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't

0: ये आपने क्या कह दिया? क्यों होने लगा दिल में कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ? खुदा कसम से चुना था मैंने इस गीत को, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस गीत को पसंद भी किया। बता दूं कि मेरे बाद कौन आ रहे हैं। मेरे बाद अभिषेक आ रहे हैं विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर। अक्सर ये प्रोग्राम आप सैंडी शाह के साथ सुनते हैं, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो आज भी और कल भी अभिषेक आपका साथ देंगे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम में। और अब कुछ और इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में मैंने आशा पारिक जी का मेरे सनम का गीत चुना है। कौन सा गीत हो सकता है, कौन सा गीत हो सकता है जो अभी तक आपने इस हफ्ते नहीं सुना, तो वो गीत प्रोग्राम में शामिल होगा। लेकिन पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए भी ब्रांच में जाकर पैसे आप ट्रांसफर करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आपके पास योनो SBI UK का मोबाइल ऐप है तो उसके जरिए घर बैठे कर सकते हैं। और बता दें आज तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। और रेट है क्या, एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आप ले सकते हैं 128 rupees and 25 paisas।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
3: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
2: Hey, MTD mate, digital taxes.
3: Mm-hmm, it's an extension down Station Road on the corner.
2: Dave, digital taxes mate.
3: Yeah, probably will need some 2x4s. I want to go take the van in for a new fan belt, squeaky.
2: Hey, Making Tax Digital, Dave.
4: Avoiding MTD. Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीतों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपके बराबर मैसेजेस मिल रहे हैं, थैंक्स अ लॉट. और अब मैं याद दिला दूँ, द किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू रिटर्न्स टू द यूके फॉर वन नाइट ओनली. कैच द सुपरस्टार सिंगर एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25 मई. गेट योर टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू और टिकट मास्टर. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो नेटवर्क.
3: लाइका गो.
2: एक और बहुत प्यारा सा गीत आ रहा है, इंतजार.
4: Like a gold.
5: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: London at Breakfast and Drive.
1: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydrolife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydrolife. Make it easy.
2: This is Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
6: अरे चंचल कुमारी साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया लॉन्ग टाइम. कैसी हो तुम?
7: खातून कौन थी?
8: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है. डोमेस्टिक वायलेंस.
7: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
9: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट. 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो. पति पत्नी और वो दो इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th of May.
10: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथहॉल
11: एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR.
10: फ्रॉम स्टनिंग ब्राइडल वेयर एंड ग्लैमरस पार्टी वेयर टू स्टाइलिश कैजुअल आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन
11: प्लस beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.

0: cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: राइट, क्रिकेट का हाल भी बता देते हैं आपको। गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हो रहा था और गुजरात टाइटंस वन बाय 77 रन्स। वाव, एंड कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे हम इस टीम को।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है Like a Gold।
1: वैसे तो मेरी बात आ रहे हैं अभिषेक और विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक महान आर्टिस्ट को मैं ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। छोटी सी थोड़ी सी बात बताऊंगी उनके बारे में। हो सकता है अभिषेक बहुत सारे गीत उनके गाए हुए लेकर आए आपके लिए। मखमली सुर जिनके थे, सुरों के बादशाह और तलत महमूद साहब का, आज 28th डेथ एनिवर्सरी है उनकी। और क्या कहा जाए, इस लखनऊ के रहने वाले गज़ल गायकी के जादूगर को बतौर अदाकार इन्होंने कितनी फिल्मों में भी काम किया, मगर गायकी को ही इन्होंने अपना करियर बना लिया था। और इस तरह से बहुत से गीत उन्होंने गाए, बहुत ऐसे ऐसे गीत हैं कि सुनकर मज़ा आ जाता है। उन्हीं में से मैंने सिर्फ एक गीत चुना है, रूप की रानी चोरों का राजा। ये 1961 में आई थी फिल्म, तो इस फिल्म का गीत सुनेंगे आप। और उसके बाद एक और रफ़ी साहब का गीत। और मुझे इजाज़त देने से पहले मैं बता दूं कि भाई जगतार जी, आपका भी मैसेज मुझे मिला है, महेंद्र जी, आंटी जी, मिसेस शुक्ला जी, थैंक यू आप सभी का। और जो नए मेरे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी। अब मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊँगी, पर मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको एक बात और याद दिलाने जा रही हूँ कि आज के बाद मेरी मुलाकात ये नहीं कि नेक्स्ट वीकेंड होगी, नहीं, मैं कल भी आपके सेवा में हाजिर हो रही हूँ। और ऑल्सो ऑन मंडे से मैं दो वीक तक बाली जी के लिए प्रोग्राम पेश करूँगी। बाली जी छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो बाली जी की जगह वो काम मुझे सौंपा गया, तो आई होप कि आप मेरा भी साथ ज़रूर देंगे। और इसी तरह से लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए लाइका गोल्ड सुने या लाइका रेडियो सुने, मैनचेस्टर में बैठे सुने, मिडलैंड्स में सुने, जहाँ भी सुने, बस हमें अपने साथ रखिएगा। हाँ, और मैं जाते जाते ये भी कहूँगी कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का कल मैजिकल म्यूज़िकल प्रोग्राम था, रिक्ता और मोहम्मद वकील साहब ने गाया और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और मैं उनकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगी। अब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल को इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं या इसी जगह 4 बजे की खबरों के बाद। बाय बाय, इन्जॉय द सॉन्ग।

0: रात भर।
1: बोले तुझे क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
13: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208-574-8410. That's 0208-574-8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208-574-8410.
14: No more worries for me or you.
15: Southall Travel, at all protected.
16: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
18: Bhakti, Prem aur Samarpan ki ek divya kahani.
19: अच्छा काना, क्यों जा रहे हो?
20: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
18: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
20: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
18: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
20: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
21: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
0: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
22: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
23: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station.
24: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो।

0: बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गंगा सारे मा मंगा रेसा सारे गामा मा सारे गंगा सारे मा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
0: मंगा रेसा
1: मंगा रेसा
2: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: संजोग फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में 1960 के दशक की यह फिल्म, और उसके पहले पहला गाना सारे गामा मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में। बहुत लोग सोचते हैं कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार एक तरह के कॉम्पिटिटर थे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं उन लोगों ने साथ में। कभी एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के एक साथ गाए हुए गानों का। और क्या बोले थे मोहम्मद रफ़ी, चला जा वापस अपनी जगह, वहाँ से किशोर कुमार ने अपनी मस्ती को बंद करा और ढंग से गाना गाना शुरू करा जैसे कि वो हमेशा गाते हैं, बड़ा अच्छा बन पड़ा था। चुपके चुपके फिल्म का ये गाना, अमिताभ बच्चन और उनके साथ कौन था जो ये गाना गा रहा था, अगर याद आ जाए तो बता दीजिए। फिलहाल ये विंटेज गोल्ड है, विंटेज गोल्ड पर आज अभिषेक दीक्षित और आपके मैसेजेस आने शुरू हुए, पता चलता है कि भाई आपको दोनों गाने अच्छे लगे। और भी ऐसे ही गाने हैं, कुछ रुपए पैसों की बात और उसके बाद फिर एक अगला गाना।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128.25 Indian rupees. Remember to make your transfer via branch, online or by using Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydrolife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydrolife. Make it easy.
3: Yeah. Leica Gold.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're atoll protected.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: हाँ भाई, प्यार तो इसी को कहा जाता है कि अगर वो पास रहें या दूर रहें, हमेशा अपनी आंखों में समाए रहें। बड़ा अच्छा दिन है फिर भी ऐसा गाना। अरे ये बहुत अच्छा गाना है भाई, ये उदास गाना नहीं है। और ये गाना बताता है कि हम हमेशा अपने प्यार करने वालों को अपनी निगाहों में बसाए रहते हैं। सुरैया जी ने बताया ये आपको और आपके घर तक पहुँचाया। किसने? डेरी वैली ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: आशा भोसले की आवाज थी, ये लाजवंती फिल्म का गाना। आशा भोसले का बहुत ही इनिशियल समय, मतलब बहुत ही शुरुआती समय का ये गाना था। सुन सकते हैं उनकी आवाज कितनी यंग, कितनी मस्ती भरी फिर भी रही। एक और गाना कुछ मैसेजेस के बाद, और ये गाना कुछ रेयर गानों में से निकल के आएगा। मुकेश और सुरमन कल्याणपुर की आवाज में, सुनते रहिए लाइका गोल्ड।
1: Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: हाँ, ये जो गाना था ये था आई जोहर महमूद इन गोवा, यस जोहर, यस जोहर, इसमें स्टार थे और अपने ही नाम को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है, जोहर महमूद इन गोवा। सिमी ग्रिवाल उनके साथ में नज़र आई थी। कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक 1960 के दशक का ये गाना बड़ा ही अच्छा गाना है भाई। बहुत से लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्हें ये गाना बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल ऐसे ही कुछ और गाने आपके लिए विंटेज गोल्ड पर मेरे साथ बने रहिए भाई। लोग पूछ रहे हैं अभिषेक दीक्षित ये पूरा नाम, और ये भी पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर पहली बार आए। नहीं भाई, पहली बार नहीं आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, परमानेंटली टेम्प्रेरी टाइप स्टेटस है, जब भी कोई नहीं होता है चले आते हैं। सैंडी सर का जो शो है उसको कवर करने का अपना ही मज़ा है, तो जब भी वो नहीं होते हैं और अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं आ जाऊं, क्योंकि इस तरह के जो गाने गोल्ड गाने निकल कर आते हैं वो इसी शो में। विंटेज गोल्ड लाइका गोल्ड से आपके घरों तक पहुंच रहा है, सुनिए अगला गाना।
1: लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।

0: लता मंगेशकर की आवाज, आनंद फिल्म का गाना। सलील चौधरी का म्यूजिक आनंद फिल्म के गानों को बड़ा ही अच्छा बना देता है। और अगर आपको ये याद बन पड़ाता है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था, तो भाई वाह, रंग जम जाएगा। आपको अगर याद आता है तो ज़रूर बताइए। ये गूगल, चैट जीपीटी, इन सबसे दूर रहेंगे विंटेज गोल्ड में। अपने आप अगर याद आता है पुराने दिनों को याद करके, ज़रूर बताइए कौन थी वो अभिनेत्री। और उसके पहले कुछ लोग मैसेज करके बता रहे हैं और बोल देने में कोई हर्ज नहीं, सुमन कल्याणपुर ने गाना गाया था, अखियों का नूर हो तो अखियों से दूर हो। बड़ी अच्छी आवाज़, अच्छे गाने, अच्छा म्यूज़िक और गाने वाले भी इतने बढ़िया। फिर कोई प्रतियोगिता, मतलब कॉम्पिटिशन, यही कहते हैं ना अंग्रेजी में, कोई कॉम्पिटिशन नहीं रह जाती भाई। सुमन कल्याणपुर हो या लता मंगेशकर, गाना सुनने में मज़ा आना चाहिए। विंटेज गोल्ड पर हैं आप अभिषेक दीक्षित के साथ।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydralife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydralife. Make it easy.
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्ट।
5: Visit travelhubworld.com.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
10: And C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
14: बचाओ काना, क्यों जा रहे हो?
15: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
13: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
15: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
13: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
15: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
16: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
17: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
16: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
17: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
19: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours, Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo apna style. Baki sab Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
2: किक किक किक किक।
1: स्टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

0: किशोर कुमार आपको ये संदेश दे रहे हैं कि भाई किसी से डरने और बुरा मानने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, अपने जिंद अपनी जिंदगी के दिन मजे से गुजारिए। टैक्सी ड्राइवर, और जी जैसा कि सुना, बोल लेने देते हैं। किशोर कुमार के गाने जब मस्ती भरे होते हैं तो आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक सुनना होता है, क्योंकि वो आखिरी में भी कुछ मस्ती करते हैं। किशोर कुमार ने गाया टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गाना, चेतन आनंद ने बनाई थी ये फिल्म 1950 के दशक में, देव आनंद उसमें स्टार थे, और म्यूजिक किसका था जानकर ताज्जुब होगा, एस डी बर्मन।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: If you use LemFi today, Indian, it will give you the rate as following. Indian rupees is 128.78. Pakistani rupees is 379.53. Bangladeshi taka is 167.25. Afghani 86.96.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: तलत महमूद की आवाज का क्या कहना भाई, छाया फिल्म का ये गाना आपने सुना लाइका गोल्ड से।
1: ये है लाइका गोल्ड। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: और आईपीएल में आज गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल का एक मुकाबला हुआ जिसे गुजरात टाइटंस ने जीता। उन्होंने 229 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। भाई गुजरात टाइटन काफी अच्छी टीम लग रही है।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Laika Gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 0208574 8410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 0737522418. Choose buybullion24.co.uk today.
7: A September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
8: BAPS mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che ap pavitra yatra par.
7: Europe na 3-9 divas na tours.
8: France, Switzerland, इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चाइल्डहुड बट मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया आर फोर्स्ड टू लीव स्कूल फार टू अर्ली। क्राई यूके इज हेल्पिंग चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल एंड बिल्ड ब्राइटर फ्यूचर्स। जस्ट £25 कुड हेल्प टू चिल्ड्रन कंटिन्यू देयर एजुकेशन। विजिट www.ukcry.org and help to make a difference.
4: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Like Extra, now available.

0: लता मंगेशकर की आवाज, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का ये गाना, वी शांताराम की फिल्म थी जिसमें संध्या शांताराम उनकी पत्नी थी वो नजर आई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के म्यूजिक से सजा ये गाना, बहुत ही उम्दा गाना भाई है। तबले की थाप, अगली बार आप ये गाना सुने तो जरूर सुनिएगा, और अगर कार में जा रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, मजा आ जाएगा सुनने में, कभी मौका लगा तो फिर से सुनाएंगे। विंटेज गोल्ड का पहला आवर पूरा हुआ जाता है और आपको छोड़ जाता हूं मोहम्मद रफी के साथ, न्यूज के उस पार फिर से मिलेंगे।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
2: Jani jigar ke challe, are mundi dhar ko kar le. Pak pak pak pak pak pak pak palidam. Bug, bug, bug, bug.

0: नहीं जा।
1: उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा, फिल्म का ये गाना काहे जिया डोले, बड़ा ही अच्छा गाना था। इसे आपके घर तक पहुंचाया डेरी वैली ने, भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Ye hai Like a Gold.
5: Like a Gold.
2: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: प्यासा फिल्म का यह गाना गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। और अगर आपको याद बन पड़ा आता है तो बताइए कि ये गाना किस पर फिल्माया गया था। दो अभिनेत्रियां थी इस फिल्म में, बताइए किस पर फिल्माया गया था।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज, गहरा दाग फिल्म का गाना 1963 ये फिल्म।
1: Like a Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: मुकेश की आवाज़, तीसरी फिल्म का ये गाना आपने सुना लाइका गोल्ड से, और दूसरा आवर ख़त्म हुआ जाता है भाई। अब एक गाना और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, उन्हीं के साथ आपको छोड़े चला जा रहा हूँ, और फिर न्यूज़ के उस पार आपसे फिर से होगी मुलाकात।
1: लाइका गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: बच्चों के द्वारा गाया गया ये गाना फिल्मी पर्दे पर, और आवाज किसकी थी, आशा भोंसले और कमला बारोट की, घराना फिल्म का ये गाना, घराना घराना फिल्म का ये गाना आपने सुना लाइक अ गोल्ड से। और इसके पहले पहला गाना भी कुछ ऐसा ही बच्चों का, हमको मन की शक्ति देना, गुड्डी फिल्म का ये गाना था। आपको अगर याद बन पड़ाता हो तो कौन थी गुड्डी भाई, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, उसकी कहानी। और हमको मन की शक्ति देना फिल्म जब इस गाने को दिखाती है तो उसमें हमारी हीरोइन जो छोटी सी बच्ची है वो दौड़ी चली आती हैं, अपनी एक आंख बंद करके, एक आंख खुली करके इधर उधर देखती हैं कि वो देर तो नहीं होगी उन्हें स्कूल की लाइन में आने में। याद आ रहा है ऐसा कुछ? बच्चों के दो गाने आपने सुने, तीसरे आवर की शुरुआत बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, आप लोगों को भी अच्छी लग रही है, आपके मैसेजेस बता रहे हैं, आपके मैसेज प्लीज़ भेजते रहिए, पता चलता है कि कैसा लग रहा है, थोड़ा हौसला अफजाई भी हो जाती है। लाइक अ गोल्ड पर बने रहिए भाई, विंटेज का तीसरा आवर अभिषेक दीक्षित के साथ।
1: ये है लाइक अ गोल्ड, SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: If you use Yono SBI UK mobile app, one British sterling pound could get you up to 128.25 Indian rupees.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
3: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
2: Hey, MTD mate, digital taxes.
3: Mm-hmm. It's an extension down Station Road on the corner.
2: Dave, digital taxes mate.
3: Yeah, probably will need some 2x4s. I want to go take the van in for a new fan belt, squeaky.
2: Hey, Making Tax Digital, Dave.
4: Avoiding MTD. Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
1: This is Like a Gold.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 02085077900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com. Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Like a Gold par Artist of the Week hai आशा पारिक. उनकी शुरुआती फिल्म का एक गाना दिल दे के देखो, बड़े हैं दिल के काले.

0: KL सहगर की सदाबहार आवाज, शाहजहां फिल्म का गाना। और ये गाना आपके घर तक पहुंचाया भाई डेरी वैली ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Or Laika Radio Network gives you some updates. फर्स्ट इज हमारे राम, लाइका रेडियो नेटवर्क इज एक्सक्लूसिवली रेडियो पार्टनर ऑफ माइथोलॉजिकल शो हमारे राम, स्टारिंग अक्लेम्ड एक्टर आशुतोष राणा एज रावण, राहुल आर बुचर एज राम, एंड इट टेक्स प्लेस बिटवीन 9th एंड 12th ऑफ जुलाई एट लंडन्स इवेंट टाइम अपोलो। वी ऑल्सो हैव आतिफ असलम लाइव ऑन 14th ऑफ जून इन O2 Arena London, and Laika Radio Network is an exclusive partner. Tickets available for that event at AXS and at the venue. There is another event. Oh, bhai, garmi ka mausam, events ki bahar lagi hui hai. Laika Radio Network has confirmed a partnership with premium hospitality brand Ragasan, and we also have Kumar Shanu coming live on 25th of May in Royal Albert Hall. And not last. Mela of 2026 on 15th and 16th of August on Abbey Park, also at the Bradford City Mela on 1st and 2nd of August at City Park and Century Square. भाई बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है।
1: Laika Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: सगाई फिल्म का ये गाना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और आपके मैसेजेस भाई तलत महमूद की जब यहाँ से आवाज़ आपके घरों तक पहुँचती है तो बड़ी मैसेजेस की एक बारिश सी हो जाती है। हाना जी, आपको ये गाना अच्छा लगा? अर्जुन जी भी कुछ तारीफ़ों के शब्द भेजते हुए, भाई धन्यवाद, अच्छा लगा सुन के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैस जी रूही रूही रूही गाने के बारे में बोल रही हैं कि उनकी कैट मतलब बिल्ली का नाम रूही है, फिल्म की हीरोइन और आपकी बिल्ली रूही। हजरा जी, तरला जी अपना संदेश भिजवा रही हैं, भारती जी भी, अमिता जी, संतोष जी हैरो से, और एक बड़ा ही प्रशंसा वाला मैसेज मिला, दिल बाग बाग मतलब गार्डन गार्डन हो जाता है भाई, कह रहे थे कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है भाई। हाँ, हिंदी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, और गानों के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें लिखी, बढ़िया सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रात में नींद नहीं आएगी इतनी सारी बातें सुनकर। राजेश जी थे ये बताने वाले, और दिनेश पोपट जी सुन रहे हैं, निर्मला जी, ब्राना बी जी वैंकूवर से, विनु विनोद और वरुण जी, और माला जी भी सुन रही हैं, और साथ में और भी कई सारे, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का नाम ले सकूं। वजह जी भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक गाना सुनेंगे, उसके बाद कुछ और भी मैसेजेस और उनके नामों को शामिल किया जाएगा।
1: सैंडी शाह लाइव ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: ये मन्ना डे की आवाज सुनिए एक और बार। सफर फिल्म का गाना नदिया चले चरेले का धारा।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 PM. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976869444।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
10: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे।
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

मुकेश की आवाज, बोल राधा बोल, संगम फिल्म का ये गाना आपने सुना। और भाई आखिरी गाना यादगार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। आज के प्रोग्राम को भाई समाप्त करने का समय हो गया है। अभिषेक दीक्षित को दीजिए इजाजत, आपके लिए जिस पथ पर चला। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights.
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Like Our Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963577. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
7: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
8: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
6: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
8: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
6: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
8: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
10: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। आज ही एक्शन ले 02089072444।
12: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
14: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
15: हो जा।

0: wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24. Our line.
1: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
3: 100% halal meat prepared with care every day.
1: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
3: And don't forget, get your favorite frozen items too.
1: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
3: There is only one.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
0: Southall Travel, at all protected.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ। Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Gold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and Motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी.
8: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
9: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
7: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला.
9: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा.
7: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू.
9: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@likearadio.com.
13: रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: The voice that turned love, heartbreak, and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.